दिल में लिखा है पूरा कैटलॉग, स्टीरियो में बजे मेरा मोनोलॉग, बैठा मैं लिखने और सोचा वो क्या राज जो निकले वो बोल दूं। ना हुआ महसूस पिछले 3-4 हफ्तों से बैठे महफूज, हम तो रूठ गए बस्तों से, रास्तों में सीखा कि हमको तो जीना